सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल के प्रभाव में जिस बात में स्तोई एक सेकंड में विदेह बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेह माना जैसे ज्यादा हो गया साथ ही सुबह हो संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। It's me.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना,
4: सदा सा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में

さっとした記憶せわがファレさっとしたわくしどっちからせわとき

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके, और समय संपन्न बनेगा इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे। सुना सभी ने ध्यान से, तो नहीं कानों खोल के सुना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sabe?

समय परमान पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती, कभी कभी की

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ग से

0: ausgesagt. Esse an Bavi at my an Bosnai to Parma Porte. To Abhi Jesse Wagon.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे कि अंतम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी, खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की। Seu

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ समझे। बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी फरमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो के अभी भी हमको चांस है जमा करें। अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा

0: Mircea, cred că nu o să tăi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

संतुष्ट रहने वाली। संतुष्ट मणियों को

Charol. Què tenéis, Sundar? Chamac. Chamac.

Ich

Santo Strong.

संतुष्टा की शक्ति सुतह और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती Stay.

そっとした。キーステティバレステティケオバルサダビデイステティ。

Yeah.

Is

ரிவதல்தா.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सृष्टि और कृति तीनों में चेक करो, संपूर्ण पवित्रता की जो सोचो।

so

Scheiße.

Itchy.

0: सुख लेना दुख नहीं लेना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Chatty.

Dosta kísérti. Kiszi mi perkárként.

I'm a circle. Sage. Just

es a mí. Voy a mandarlo. ¿Qué es a mí?

What?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझ करके

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आवश्यक है कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वो मर रहा है भय आपको आ रहा है। निर्भय ठीक है, उसको शांति का सहयोग उस आत्मा में रैम दिल के भावना से सहयोग दो, भय में नहीं हो। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकती है, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है जो अनेक प्रकार के भय है। अपने कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब का निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो सदा साफ दिल सच्चे दिल, भय कभी नहीं आएगा। सर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल सच्चे दिल तो साहेब राजी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ निमित्त भाव आ जाए हर समय सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उत्साह है तब तो आ तो रहे हैं।

0: मिले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Chokey।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आदत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जाने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
4: दूसरों को कराएंगे
3: भी और अपना अनुभव सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: sonaré. Papta daki. Sabi bachon ke vrat. Ek ek bache ke vrat. Chahe desh. Chahe videsh mein. Chahe sayogi hai. Kyunki sayogi bhi parichay to mila hai na. परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सके
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मांड जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते है ना वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है। युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ शेर का रूप है, लेकिन अंदर बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए प्रारूप लिया दिए, क्या होगा? बाप दादा ने पहले भी पाठ पढ़ाया, क्या होगा कभी नहीं तो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़ाया, जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्रह्मान बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा, चाहे ऐसी होती है, जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति न्यारापन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कमरा तो है, मारो अच्छी तरह से। सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर बड़ो को कहा जाता है संप्रत स्वरूप।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

होगा जो एक दिन में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Edgaru. के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो, तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रियलिटी याद करो। सभी के सिर पर रियलिटी का लाइट का ताज, अनादि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा विशेषता कितनी रायल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी up.

जन्म से तत्काल पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जनवरी मास को स्पेशल

को संपन्न करना है, पवित्रता श्रम

0: जैसे पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र डबल पवित्रता प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Fristi mânca în pocără.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Chacho. जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समाधान सर

स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन। समस्या

Chef Woody. Vijay Swarup Singh. Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद एक मिनट पावरफुल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लिए आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में कह रही है, वाह बच्चे वाह, हर एक के दिल में कौन सभी क्या कह रहे हैं, मेरा बाबा ये गीत तो सुना है ना बाप, बाप कहती है मेरा बच्चा, हर बच्चा कहती है मेरा बाबा, कितना मीठा बात। बस मेरा जो कह रहे है ना, उसकी कमा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: व्यक्ति भी है ज्ञान में भी आनंद नहीं भरा।

0: बच्चे क्यों पढ़ते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार

0: no.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो, सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में संबंध संपर्क में भी कर्म में भी मत लो, टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्यों को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिले और तख्त मिले ये एक्स्ट्रा मदद है, तो हिम्मत और खुलास दिलाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचरा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Thank you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: से आप सबको मुबारक दे रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ट्रैवल विदेशी भी है, ट्रैवल विदेशों को देखकर आप सभी भी खुश होते हो ना। देखो आप सबको देखकर कितने खुश हो रहे, क्योंकि ट्रैवल विदेशों का संगम युग के ड्रामा में बहुत पाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पाठ। बाप दादा कहते हैं ट्रैवल विदेशों ने पाप का एक टाइटल प्रत्यक्ष किया। पहले थे भारत कल्याणी और अब है प्रैक्टिकल में विश्व कल्याण। बाप दादा भी जब विदेश में नए नए करप पहले वाली आत्माएं आती है तो बाप दादा भी उनके विशेषता

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से रुका हुआ जो भी अपन ने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं, फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? हाँ, देखो इसकी भी विधि बताते। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है। और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास के वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। आप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sss.

voll daneben.

yo caí banda, no sé. Yo me llevo.

see.

Yes.

Sarabi. Moccasini.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बार कहते हैं बाबा आज वो चैन बाबा भूल गए, बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए 63 जन्म और छोटा सा जन्म 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए क्या? इसीलिए अभी माया की चतुराई को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों के पास

0: algo paranal. Ať Vishwa mi Sukh Shanti Santosh
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाहर के लिए साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं की साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ न करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क।

0: जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी किसी सेट होगे फिर हर कार्य करो इस मालिक बन के अथॉरिटी चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहजन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? तो नहीं करते ना।

so much nissy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे क्या से क्या बना देते।

Anne Botti. Sir.

Chat.

0: recherté en C.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इसी है।

0: करम में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर करम करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी करम किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल। और करण करावनार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो, और विस्तार में नहीं जाओ, तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: अनुभव करेंगे पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो न सुनो न बोलो न सोचो, और मांगो उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Inch.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चार को नहीं देखते।

0: विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदले करे, बदले करे, नहीं करे रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं बन से मरना है। तो मरना भी इस जन्म राज भाग्य में जीना है। मंसूर है, मंसूर है टीचर्स, तो बाप दादा यही देखने चाहते, समझा?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

so much.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत

लगा देगा।

0: chico. हिम्मत रख, विजय प्राप्त कर रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सभी अनुभवी के पाप का निर्स्वार्थ अविनाशी सने हर एक बच्चे को snake।

ちゃった。

अपने को बाप के साथी समझते हैं। सनेही आत्मा

Aimer, c'est dire.

Sunday.

मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने बना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों को

fishes.

was there now.

name for this key. Gift. ठीक है।

Lägen. Co píšme? Koj na koj. Srkám tanc. इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा Checker.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। तो दृढ़ता मेजॉरिटी बाप दादा ने देखा, इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन संकल्प करना है। कि कभी भी किसी के प्रति

0: Question boner. Mit der nächsten. Harald mal geblitzt.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
2: Yeah.
1: के साथ ऊंचे स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्ति आत्माओं

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल और था

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? Yeah.

0: हम अपमाने में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अलबेले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: శివ రేడియో
1: సత్యం శివం సుందరం
2: సత్యం శివం సుందరం
0: ஓ பாத்

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन परिवर्तन

повощал.

Yes, sir.

about me. Fuck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अब

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माए हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम के शोक लगाना भी क्या मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा के ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं, बहुत सहज। क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए है मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके, अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई, अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो। सोचो जिसे आवाज सहज फैल जाए, अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स, अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो। कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेंगे ही। आप लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्म, इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। जो खुशी से समर्पित होती है, हद कम मैं और मेरे में, वो जन्म जन्म फर्से के अधिकारी बन जाते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्म जीवन की मोक्ष सदा केयरफुल और केयरफुल मोक्ष बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना कंट्रस्ट लिया है कि प्रकृति के मूड भी चेंज करे। प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंबाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार, इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड ऑफ वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा दिखता है, परों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेलने करो। क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

见。

خوشی.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: निस्वार्थ विश्वसनीय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाती है। निर्णय की निशानी इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता है, तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हल चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा

सभी बच्चों को या

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

नमस्ते जो पापड़ बचूंगा सनबुक मिलन।

Nika. Queen Nayanaya. Programbana. Oh no.

अभी ऐसा समय

0: इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे और बाप दादा भी खुश है। कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Wow. नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होते हैं। तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मांड जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्रह्मांडों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस वाली मुक्ति वर्ष बना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो मुक्ति वर्ष? है मुक्ति वर्ष ये बोलो। जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Wow.

Come on.
Fica casado, nem cal. Coram, orçam, dizem, samandam.

suami. Sabu Faredi. Jute bache bhi hai. Teachers bhi hai. Kyunki teachers hi to samarpan ho gaye. Kumariyan bhi hai. Pravrti wale bhi hai. Sab Faredi. सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अरिजीत थी, तीना बच्चे हमको कब चांस मिलेगा मिलने, तो अच्छा हुआ। कौन सा देवता बनेंगे?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: किसको चलते फिर

इसको आप सत्वचन महाराज

Listen.

Anymore.

Lapa!

किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से।

0: sello de naya sochna naya karna uski avashyakta hi nahi jo baap ne kiya wo follow father sello na
1: sunte rahiye शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप में तो

Yeah.

0: geçirdi. Aç gel. Kisi ko bhi koi title milte to wo bhi apna bhagya samajhte, lekin aap bachcho ko ek ek swaman kisne diya, swayam baap dada har bachche ko swamandari banaya, ek ek swaman ko yaad karte khushi mein urte ho, to swame bhi itna sada
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सारे कलब में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का

विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का प्यार जन्म भी साथ है, और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में, हर एक बच्चा

combined. Combined रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना, सात जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वादा है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अपने स्वीटों में।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है
3: आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी तरफ रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए और फॉरेन की सेवा शुरू से ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखा है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। अभी सुनने की इच्छा बढ़ रही, अभी देखो निमंत्रण देते हैं तो आपका हाल तो बढ़ जाता, सेवा फैलाओ, चांस भी मिल रही है। तो विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह है, ये समय बदल सकता है। आज पर भी नहीं अब क्योंकि समय पांचों

आवश्यक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और सो उन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुमारियाँ क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में मिटना। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल। सचमुच कोई कारण है, कईयों की सरकमस्टेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली भाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया स्वउन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वउन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किट-किट वाले नहीं बनना। योग्य सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न तू तो बहुत हैंस बन सकती है। अभी हैंस की कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को। मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा को करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का पल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Exercise, girl.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

salta na chair. Nick. Joshua. आपको हलचल मिला है, मानो चांस नहीं मिला है। सेवा और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो वो सेवा क्या, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। ऐसी सेवा का, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा सभी के दुआओं से

स्वरूपो सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत आ

सोच रही थी, लेकिन इस समय चलो और कोई सेवा

Oh.

So much.

0: उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है हो गया दिन बहुत सोचो, हिसाब किताब कच्चो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

있었다. 이튿날이 지스르버니까 사던길 보초다사 사던을 로그 리지스르버니 Shut up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Suck.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं से कर रहा है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से if I-

अशांति से नहीं छुड़ा सकते, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे इस

Esse apple.

0: छप जाओ जैसे जाओ, जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखियम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Chico, ¿verdad?

अपने स्वमान।

स्वमन कितना बड़ा है, चले गए अनादि स्वरूप में, जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है।

Anadi sorup meh.

Aquí.

अपना स्वरूप देखो।

इतनी सुंदर।

कोई देख।

अपने सो

liceo. Con Sayu Kage.

Yes.

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जल्द। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज अधिकारी

जीवन में।

Sip.

इसलिए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सक्सेसफुल कभी भी जो नहीं होते उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना, कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो?
2: पीछे ही है
1: इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट सेकंड में इस जान को पाने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल।
2: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहती है। कोई भी बात सभी

head.

push me such, Jared. Essay.

amigo. Cuscuz.

しれない。歩くしかない。ヘパさん。

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज, थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देख

Sí.

0: us? Our attention chalte firte karam karte beech beech mein karte jana to ye practice mansa seva karne mein bhi sahyog denge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग के बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता बातें और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही है, ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज के दुनिया में माताओं की तरफ सभी की नजर। इसलिए ये प्रोग्राम धाम धूम से करो, माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखे कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितने ऊंची है। अभी बाप दादा माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों सैंपल बनाओ जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाए कि घर आश्रम कैसे बना, बच्चे कैसे अपने मर्यादाओं में रहते। इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाए, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वो माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि ये माताएं बच्चों का कल्याण भी कर सकते। जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करे जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकते। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। सकता है सेकंड में पाश्वतानर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रही है, तो पाश्वतानर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद अनर।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते तो जैसे आप सभी ने मत रखी वैसे मदद भी बाप करेंगे, साथी भी मदद करेंगे, तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा परिवर्तन। छोटी मोटी बात है ना, वो परिवर्तन आप ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना
2: विश्व परिवर्तन।

ईश्वर को बनाने वाले हो, पाप दादा तो छोड़।

0: सुनेंगे सुनेंगे इसमें याद रहो। अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है, सभी को नहीं कहती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। कार्ट्रिज का नहीं, काट का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सफलता

sano kacamata. Abisaritin me. Bich-bich me ye. Apna chaat ji karo. Sarva khazane jama kitne ki jama ka khata nikalo pota mel nikalo ek minute me संकल्प चलते हैं फास्ट गति है ना संकल्प की कितने सफल हुए कितने व्यर्थ हुए कितने समृद्ध रहे कितने साधारण रहे अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प हर सेकंड हर श्वास जो पीते वो वाव वाव वाई नहीं हो वाव अभी कोई समय वाव होता है कोई समय वा की बजाय वाई हो जाता है कोई समय बिंदी लगाती कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती आप सबका मन भी कहे वाह और जिसके भी समन समन

0: शब्द निकले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन को समाप्त करो। ये सुख मैं बन अलौकिक जीवन में ये मैं बन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन दीवार पुरुषार्थ

0: कुशारत हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरत में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं शरत पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरत जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो, उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोग।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: अनुभव करके देखना। हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना। सफल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हो गया। लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड हो। सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते हैं कभी कभी। नहीं, पहले बाप दादा आप सबका साथी है, और अविनाशी साथ निभाने वाले। मौज में रहते हो ना, रहते हो मौज में, उदास तो नहीं होते, होते हाँ ना नहीं करते, उदास तो नहीं ना, मौज में रहते हो ना, मौज ही मौज है। हम बाप के बाप हमारे,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।

msamehe. Voll Beinsleser.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Boss।

baby. But